गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सभी का स्वागत है 107 एफएम रेनबो पर। आरजी अंकित आपके साथ और मैं आजुरु कार्यक्रम लेके नॉनस्टॉप गपशप। जी हाँ दोस्तों, सुबह के हो चुके हैं 10:03 और आपका दोस्त अंकित यहाँ पर है आप लोगों से जुड़ने के लिए, आप लोगों से बातें करने के लिए और आप लोगों के साथ रूबरू होने के लिए। और दोस्तों नॉनस्टॉप गपशप के बारे में तो आप जानते हैं कि क्या होता है, लेकिन जो नए दोस्त जुड़ते हैं हमारे साथ, हमारी फैमिली बन जाते हैं, उनको बता दूं कि नॉनस्टॉप गपशप में दोस्तों हम लाते हैं एक विषय, बातें करते हैं उस टॉपिक पर और आप लोगों से जानना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में, ताकि आप भी हमसे शेयर करें आप जो जानते हैं, आपकी क्या नॉलेज है और मैं भी आपसे थोड़ी बहुत बातें आपसे शेयर कर पाऊँ। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से दोस्तों नॉनस्टॉप गपशप चलता रहता है हमारे साथ और इस कार्यक्रम में दोस्तों मैं रहने वाला हूँ आप लोगों के साथ 11 बजे तक। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो होने वाला थोड़ा धमाकेदार, थोड़ा सा सबके लिए पसंदीदा, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं फुटबॉल वर्ल्ड कप की। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरे कार्यक्रम में आज बताते रहूंगा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में, लेकिन आप लोगों से भी जानना चाहूंगा दोस्तों कि आप इस बार किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही जब भी आप फुटबॉल वर्ल्ड कप देखते थे रात को, ज्यादातर दोस्तों ये रात को ही हुआ है, तो फिर आप क्या करते थे उस समय, मतलब आपके अपने फैमिली के साथ देखते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ देखते थे, या फिर जब आप टीवी खोल के जैसे ही फुटबॉल ऑन किए तो आपके घर वाले आ गए कि इतनी रात को तो अभी भी टीवी चला के बैठा है। जो भी आपकी यादें हैं, जो भी

आपसे रिलेटेड है, आपकी फुटबॉल वर्ल्ड कप से रिलेटेड आई है, हमसे शेयर करिए। और शेयर करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस अपना फोन उठाना है और डायल करना है 2221314 जी हाँ, इस नंबर पे करना आपको सिर्फ डायल। तो चलिए देखते हैं पहला दोस्त कौन आता है, और दोस्त जब तक आएंगे तब तक सुन लेते हैं ये पहला ट्रैक।

0: फिल्म गोल का टाइटल ट्रैक दलेर मेहंदी की आवाज में, प्रीतम का संगीत जावेद अख्तर की बोल, और फुटबॉल की बात हो, और हमारे साथ हमारे दोस्त ना आए फोन लाइन पे, ऐसा कैसे हो सकता है। एक दोस्त आ चुके लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग अंकित दा।
0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कौन है आज हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: शंकर बोलती हुगली देखे।
0: शंकर, वेलकम टू माई शो। बताओ तुम आज किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो इस वर्ल्ड कप में?
1: আমি তো অবশ্যই ব্রাজিল কে সাপোর্ট করবো, কিন্তু এই যে ফুটবল খেলাটা যখন হয়, বিশেষ করে টিভিতে সবাই মিলে যখন ফ্যামিলি বন্ধু বান্ধব মিলে সবাই মিলে দেখি, একটা আনন্দ করতে করতে দেখি ভীষণ ভালো লাগে একদম। আর ব্রাজিল কে সাপোর্ট করবো সবাই, কেন আর আমার বন্ধুরাও তো পর্তুগালের সাপোর্টার।
0: আচ্ছা, বাহ বাহ বাহ বাহ, মতলব দোনো কে বিচ বহুত টক্কর হোগি।
1: হ্যাঁ
0: একদম, অবশ্যই। থ্যাংক ইউ শঙ্কর, ফোন লাইন পে আনে কে লিয়ে আর হামসে শেয়ার করনে কে লিয়ে আপনি বাতে। और 2026 फीफा विश्व कप 23वां फीफा विश्व कप होगा, जो कि फुटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। इस फीफा विश्व कप 2026 के रूप में प्रचलित किया जा रहा है। ये फीफा के सदस्य संघों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा लड़ी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। ये टूर्नामेंट 2026 में दोस्तों 11 जून से शुरू हो चुकी है और ये 19 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। इसे 3 उत्तरी अमेरिकी देश यानी कैनेडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 शहरों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। ये टूर्नामेंट 3 देशों द्वारा आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा, साथ ही 1994 के बाद पहली बार ये उत्तरी अमेरिका में आयोजित हो रही है। 2022 से अर्जेंटीना मौजूदा चैंपियन है, और जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो ऑन किया है उन्हें बता दो कि दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और फुटबॉल वर्ल्ड कप से जुड़ी कुछ यादों के बारे में आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं इस फीफा वर्ल्ड कप को। और अपनी बातें शेयर करने के लिए आप हमारा फोन नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2213-1341।

0: फिल्म भूत बंगला से विशाल मिश्रा, नकाश अजीज और अंतरा मित्रा लेकर आए थे एक ट्रैक पीतंगा कंपोजिशन कुमार के बोल। और हमारे साथ और एक फ्रेंड जुड़ चुके हैं लाइन पे, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ नमस्ते, कौन है आज हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: मैं हावड़ा से सुप्रिया बोल रही हूँ। अंकित कैसे हैं?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: अच्छी हूँ।
0: और बताइए वर्ल्ड कप के बारे में क्या कहना चाहती हैं?
1: देखिए हम तो हाई साहब सारा दिन में काम के बिजी रहते हूँ, लेकिन रात में खेल देखने का मतलब हमारे लिए बस की बात नहीं है।
0: अच्छा।
1: हमारा जो घर में सदस्य है मिसी मेल है वो लोग देखते हैं, हम लोग अर्जेंटीना का फेवर, अर्जेंटीना हमको अच्छा लगता है।
0: वाह वाह वाह, अर्जेंटीना की आप फैन है।
1: और हम लोग क्रिकेट की प्रेमी हूँ, जब भी आती है तो हम लोग क्रिकेट ज्यादा देखते हैं।
0: जी हाँ, हम लोग तो हर खेल के फैन हो जाते हैं, चाहे जो भी खेल चल रहा हो टीवी पे, चाहे फुटबॉल क्रिकेट ओलंपिक्स कुछ भी खेल चल रहा हो, हम हमेशा फैन रहते हैं खेलों के। और इन्होंने बताया कि इनकी पूरी फैमिली अर्जेंटीना की फैन है, इन लोग अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों बता दूं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कि ये टूर्नामेंट 32 टीम से बढ़कर 48 टीमों को शामिल करने वाला पहला टूर्नामेंट हुआ है। मेक्सिको ने 1970 और 1986 में टूर्नामेंट की मेजबानी की थी, यह उसका तीसरा मौका होगा और वह तीन बार विश्व कप की मेजबानी या सह मेजबानी करने वाला पहला देश बन जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA ने आखिरी बार 1994 में विश्व कप की मेजबानी की थी, जबकि कनाडा पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी या सह मेजबानी करेगा। कतर में नवंबर और दिसंबर में 2022 संस्करण आयोजित हुआ था, इसलिए ये आयोजन अपने पारंपरिक ग्रीष्मकालीन यूरोप के अनुसार कार्यक्रम में भी लौट आएगा।

फिल्म किक से दोस्तों यो यो हनी सिंह और जैस्मिन सैंडलेस लेकर आए थे ट्रैक। यो यो हनी सिंह का कंपोजिशन, हनी सिंह और जैस्मिन सैंडलेस के थे बोल। और दोस्तों बात करें ओपनिंग मैच के बारे में, तो ओपनिंग मैच में ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से हुआ था, जहां पे मेक्सिको ने जीत दर्ज की थी। भारतीय समय के अनुसार दोस्तों ये मैच रात 12:30 बजे शुरू हुआ था।

0: फिल्म जय हो से दोस्तों आप सुन रहे थे अरमान मलिक मैरियाना डी क्रूज की आवाज में, ये ट्रैक अमाल मलिक का कंपोजिशन शब्बीर अहमद के थे बोल। और एक फ्रेंड आ चुकी है लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ नमस्ते, कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: नमस्कार दादा,
0: मैं पायल बोल रही हूं। हाँ पायल, वेलकम टू माय शो। बताओ क्या कहना चाहती हो आज के बारे में?
1: তো খেলা হচ্ছে তো ওয়ার্ল্ড কাপে দাদা, আমি সবসময় যেটা সাপোর্ট করি সেটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি সাপোর্টেরই হচ্ছে ব্রাজিল ছিল, ঠিক আছে, ব্রাজিল। তো আরেকটা যেটা বলবো দাদা, এই যে ফ্যামিলির সাথে মানে কিছুটা টাইম এই যে স্পেন্ড করা খেলা দেখার জন্য, তো এটা শুধু যে আমরা খেলা দেখছি বা সেখান থেকে কিছু এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করছি আমরা, যে তারা কতটা স্ট্যামিনা নিয়ে খেলছে বা এটাও আমাদের দেশের জন্য একটা গর্ব। আর শুধু তাই নয়, এটার পাশাপাশি মানে আমরা তো সবসময় কাজে ব্যস্ত থাকি, তো একটা দিন ফ্যামিলির সাথে দেখা মানে এখানে মনে একটা ফ্যামিলি বন্ডিং ও তৈরি হয়ে যায়
0: আমাদের,
1: একসাথে বসে খেলাটা দেখা। তো এটাই দাদা, এনজয় করো সবাই, সবাইকেই বলবো এইটুকুই বলা।
0: থ্যাংক ইউ পায়াল, থ্যাংক ইউ, এসেই হামেশা আতে রহো আর আচ্ছি জি বাতে করতে রহো। तो ब्राजील के ज्यादा सपोर्टर मुझे आज देख रहे हैं, और वो भी दो लड़कियां आ चुकी है दोस्तों हमारे आज फोन लाइन पे, जो फुटबॉल को ज्यादा पसंद कर रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप है, प्रत्येक ग्रुप में चार चार टीम शामिल है। हर ग्रुप के शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। इसके अलावा तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें भी नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिसमें अंतिम 32 टीमों का चरण बनेगा।

0: ये जवानियां दीवानी से दोस्तों अरिजीत सिंह लेकर आए थे ये ट्रैक, प्रीतम का कंपोजिशन अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। और सुबह के 10:32 हो चुके हैं, 10:32 आरजे अंकित आपके साथ शो चल रहा है नॉन स्टॉप गपशप आपकी अपने चैनल पर, यानी 107 FM रेनबो पर रहूंगा 11 बजे तक आपके साथ। और आज दोस्तों मैं नॉन स्टॉप गपशप में आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि इस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह से इस वर्ल्ड कप को आप इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप अपनी बातें बताने के लिए आ सकते हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, हमारा फोन नंबर है 2213-1341। और ऐसे ही एक दोस्त आ चुके हैं लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग अंकित।
0: गुड मॉर्निंग, कौन है हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: मैं
0: मनीरुद्दीन जी, बताइए आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं?
1: सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर योर फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन।
0: थैंक यू सो मच।
1: और ऑल टाइम माय फेवरेट टीम इज अर्जेंटीना।
0: जी जी जी।
1: और माय फेवरेट प्लेयर मेसी, लियोनेल मेसी। और माय न्यूक्लियर फैमिली, सो आई वाचिंग द फुटबॉल अलोन, ओनली आई वाचिंग अलोन, क्योंकि हमारा 3 मेंबर है और छोटा बच्चा और वाइफ है, लेकिन मैं खुद ब खुद देखता हूँ फुटबॉल,
0: बहुत अच्छा करते हैं। और मेसी के तो हम सभी फैन हैं, मेसी का फैन कौन नहीं है इस दुनिया में दोस्तों। थैंक यू आने के लिए, ऐसी अपनी बातें बताने के लिए हमारे साथ। और दोस्तों इस प्रतियोगिता में, यानी इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज होंगे और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा।

0: चेन्नई एक्सप्रेस से दोस्तों सुन रहे थे सुनील चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में ट्रैक, विशाल शेखर का कंपोजिशन, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। एक और फ्रेंड आ चुकी है हमारे साथ फोन लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ नमस्ते, कौन है जो हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: हमें पवित्र शाह बोलती, दो नंबर एयरपोर्ट गेट दमदम से।
0: हेलो पवित्र जी, वेलकम टू माय शो। बताइए आप किस टीम को सपोर्ट?

0: আমি এই থেকে আমি ম্যারাডোনা এবং আর্জেন্টিনার ফ্যান আমি একজন।
1: थैंक यू पवित्र जी आने के लिए बताने के लिए आप किसको सपोर्ट करते हैं। ऐसी आती रहेगा मतलब फोन लाइन पे और देखिए कैसे हमारे दोस्तों वेस्ट बंगाल के लोग कितने बड़े फैन होते हैं फुटबॉल के। चाहे रात हो चाहे दिन हो हम फुटबॉल देखना या खेलना कभी नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों अब कुछ रोमांचक और अनोखी बातें बताता हूँ आपको फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। सबसे पहले बताता हूँ आपको ट्रैवल चैलेंज के बारे में। टूर्नामेंट को तीन बड़े देशों में आयोजित किया जा रहा है जिसमें टीमों को सफ़र करने में भारी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए जैसे बोस्निया और हर्जेगोविनिया की टीम को ग्रुप स्टेज के दौरान करीब 5000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। वह अपने पहला मैच टोरंटो यानी कनाडा में खेलने के बाद दूसरा मैच खेलने के लिए 3500 किलोमीटर दूर लॉस एंजलस अमेरिका जा रहे हैं।

आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि इस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह इस वर्ल्ड कप को आप सेलिब्रेट करते हैं। और अपने बातें बताने के लिए आ सकते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारा फोन नंबर है 2213-1341। और दोस्तों मैं कुछ रोमांचक बातें आपको बता रहा था सब, और दूसरी बात यह है कि रीजनल क्लस्टर वो क्या है, लॉजिस्टिक्स और खिलाड़ियों की थकान को कम करने के लिए फीफा ने सभी 16 मेजबान शहरों को 3 रीजन यानी वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न में बांटा है। वेस्टर्न रीजन में वैंकूवर, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस आता है। सेंट्रल रीजन की बात करें तो उसमें आता है गुआडालाजारा, मैक्सिको सिटी, मॉन्टेरो, ह्यूस्टन, डेलास, कैंसस सिटी। और ईस्टर्न रीजन की बात करें तो उसमें आता है एटलांटा, मियामी, टोरंटो, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी।

आयुष्मान खुराना और नीति मोहन की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक कंपोजिशन और लिरिसिस्ट दोनों ही फलक शब्बीर की। 10:45 AM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ 107 FM रेनबो पर शो चल रहा है नॉन स्टॉप गपशप। और आज नॉन स्टॉप गपशप में दोस्तों मैं

घड़ी की आवाज में ये ट्रैक विशाल और शेखर का कंपोजिशन अनविता दत्त के बोल। और दोस्तों इस बार डेब्यू करने वाले चार नए देश आए हैं। इस बार 48 टीमों के बढ़े हुए फॉर्मेट की वजह से चार देश पहली बार फीफा पुरुष वर्ल्ड कप के मुख्य स्टेज पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको देखेंगे कैबो वर्डे, फिर कुराकाओ, फिर जॉर्डन और लास्ट में उज्बेकिस्तान। ये चार नए देश दोस्तों शामिल हुए इस बार वर्ल्ड कप में।

रमैया वस्तवाई, समीका सिंह और मोनाली ठाकुर लेकर आए थे ये ट्रैक सचिन जिगर का कंपोजिशन प्रिया पंचाल की बोल। सबसे सफल टीमें और मौजूदा चैंपियन इस विश्व कप के इतिहास के बड़े दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर हो रही है दोस्तों। ब्राजील फुटबॉल इतिहास की सबसे सफल टीम है जिसने रिकॉर्ड 5 बार यह खिताब जीता है। जर्मनी और इटली दोनों ही टीमों ने 4-4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है और अर्जेंटीना लियोनेल मेसी की कप्तानी में 2022 का खिताब जीतने वाली अर्जेंटीना इस बार मौजूदा चैंपियन के रूप में उतरी है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के एक आखिरी ट्रैक की तरफ।

0: cocktail.
1: फिल्म कॉकटेल से जावेद बशीर लेकर आए थे ट्रैक प्रीतम का कंपोजिशन अमिताभ भट्टाचार्य के थे बोल।
2: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।
1: दोस्तों इसी के साथ हमारा कार्यक्रम होता है साथ मुझे यानी आपके दोस्त अंकित को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अ वेरी हैप्पी वीकेंड। और मैं बहुत जल्द आप लोगों से फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ एक नए दिन में। तब तक के लिए सुनते रहिए, साथ रहिए 107 एफएम रेनबो। आने वाला है अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आप लोगों के लिए।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर, रेनबो पर,
1: 107 FM रेनबो पर तीन का तड़का, रंगीन पर्दे की दुनिया से चमकते ख्वाबों की गली तक, खबरों का ये मसालेदार जायका जो ले आते हैं हम हर दिन 3 बजे आपके लिए खास तड़का, गॉसिप, ग्लैमर और सिनेमा का मजा हर पल में मिलेगा तीन का तड़का। तो तैयार हो जाएं दोस्तों बॉलीवुड की हर हलचल जानने के लिए, क्योंकि शुरू हो रहा है तीन का तड़का। शुरू करेंगे गीत के साथ, आपके साथ बनी हुई हूँ मैं संचिता। 3:04 और आप जिस कार्यक्रम के साथ रहेंगे 4 बजे तक वो है तीन का तड़का। फिलहाल एक गीत आप जैसा कोई से अभय जोधपुरकर और आनंदी जोशी की आवाज, सुनते हैं इस गीत को कार्यक्रम तीन का तड़का का पहला गीत आपके लिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर,

0: रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का। तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर।
2: 107 FM रेनबो पर तीन का तड़का। भारत भाग्य विधाता ने सिनेमा घरों में दी है दस्तक, भावनाओं की लौ फिर जली। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं तीन का तड़का कार्यक्रम के साथ। जून की हवा में इस हफ्ते एक नई कहानी की खुशबू घुली है। 12 जून को कंगना रनौत अभिनीत भारत भाग्य विधाता सिनेमा घरों में रिलीज हुई और फिल्म ने अपने संवेदनशील विषय के कारण चर्चा बटोरी। 26/11 हमलों के दौरान अस्पताल कर्मचारियों की बहादुरी पर आधारित ये कहानी दर्शकों के दिल को छूती दिखी। सोशल मीडिया पर कुछ दर्शकों ने इसे भावुक अनुभव बताया, जो कई लोगों ने कंगना के गंभीर अभिनय की तारीफ की, मानो पर्दे पर साहस की एक नई कविता उतर आई हो। मैं वापस आऊंगा ने इम्तियाज अली के प्रशंसकों में जगाई है उम्मीदें। इश्क और यादों की गलियों में भटकाने वाले निर्देशक इम्तियाज अली इस हफ्ते फिर चर्चे में। 12 जून को रिलीज हुई मैं वापस आऊंगा ने दर्शकों के बीच उत्सुकता जगाई है। दिलजीत दोसंज और शर्वरी की जोड़ी वाली इस फिल्म को संगीत और भावनात्मक कहानी के लिए सराहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई दर्शकों ने लिखा, ये फिल्म दिल की पुरानी खिड़कियों पर खोल देती है। तो कितनी पुरानी खिड़की खोल रही है ये फिल्म, ये तो आप सिनेमा घरों में पहुंचेंगे तभी पता चलेगा। लगता है इम्तियाज फिर रिश्तों की धुन छेड़ने लौट आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम धुन के तार को छेड़ते हैं। ज्योति नूरा की है आवाज में, ये है तनुवेद मनु से और गीत लिखे राजशेखर ने, जिसे कृष्ण ने संगीत से बांधा। कार्यक्रम है तीन का तड़का। 3:11 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: तीन का तड़का और 3:17:20 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ और लव आजकल से मोहित चौहान की आवाज, इरशाद कामिल ने लिखा, प्रीतम ने इसे संगीतबद्ध किया।

दूरियों को कम करते हैं खबरों की दुनिया से। आप और कि हमारे दरमियान जो ये बॉलीवुड न्यूज़ है, ये जो तीन का तड़का के जरिए इन दूरियों को कम करते हैं हम। कार्यक्रम तीन का तड़का, 3:22।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर,
1: 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, 3:26:54। जून बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर, फिल्मों के बीच जंग तेज हो रही है। और अब जरा टिकट खिड़की की बात करें, जून 2026 का दूसरा सप्ताह बॉलीवुड के लिए किसी रणभूमि से कम तो नहीं। एक के बाद एक नई रिलीजेस, अलग अलग जॉनर और दर्शकों का बटा हुआ ध्यान। सबसे बॉक्स ऑफिस की टक्कर को और दिलचस्प बना दिया है। ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सिर्फ बड़े सितारे नहीं बल्कि मजबूत कहानी ही दर्शकों का दिल जीत पाएगी। मानो बॉलीवुड कह रहा हो अब कहानी ही असली सितारा है। जी हाँ, बात तो सही है। बॉबी देओल की बंदर पर चर्चा है जारी, और जारी रखते हुए अभिनय ने खींचा ध्यान। कुछ कहानियां रिलीज के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। जून के दूसरे सप्ताह में बॉबी देओल की बंदर को लेकर चर्चा बनी रही। समीक्षकों के ने कहा कि बॉबी के गंभीर अभिनय की तारीफ की जा रही है, जबकि दर्शकों ने फिल्म के सामाजिक संदेश पर अपनी राय दी। सोशल मीडिया पर इसे सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म बताया गया। जैसे किसी शांत नदी में गहराई छुपी होती है, बिल्कुल वैसे बंदर की कहानी भी धीरे धीरे अपना असर छोड़ती दिखाई दे रही है। हाउसफुल 5 का नया गाना बना सोशल मीडिया का मेहमान। हंसी की पोटली लेकर हाउसफुल 5

खबरें फिर सुर्खियों में आ गई है। 7 से 14 जून के बीच फिल्म का नया प्रमोशन गीत रिलीज हुआ, जिसमें मल्टी स्टारर की क्षमता या मस्ती या फिर रंगीन अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर फैंस ने इसे पूरा फैमिली एंटरटेनमेंट पैकेज कहा, मानो गीत की ताल कह रही हो हंसी का मौसम लौट आया है, तैयार रहिए। फिल्म की रिलीज को लेकर उत्साह अब और तेज हो चुकी है। चलिए अब बात कर ही रहे हैं हाउसफुल 5 की, तो एक गीत भी बनता है ना, मधुवंती बागची और सुमंत मुखर्जी की आवाज, कुमार ने लिखा और व्हाइट नॉइज ने इसे संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम 3 का तड़का, आप जुड़े हुए हैं संजिता के साथ।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: सरकारी उद्यम और तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत सरकार की एक अत्याधिक सुरक्षित और लोकप्रिय लघु बचत योजना। इसमें 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति निवेश कर सकते हैं। फिलहाल इस योजना में शानदार 8.2% वार्षिक ब्याज जो है मिल रहा है, जिसका भुगतान हर 3 महीने त्रैमासिक में किया जाता है। ब्याज दर जो है 8.2% की ब्याज लागू है। निवेश सीमा की अगर बात करूं तो निवेश सीमा जो है इन्वेस्टमेंट लिमिट न्यूनतम निवेश 1,000 और अधिकतम 30 लाख। मैच्योरिटी पीरियड या मैच्योरिटी इस स्कीम की जो लॉक इन अवधि है वो है 5 वर्ष और इसे पूरे होने पर 3 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। टैक्स बेनिफिट या कर लाभ, इसमें जमा की गई राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की कटौती का लाभ मिलता है। यदि ब्याज आय एक वित्तीय वर्ष में 50,000 से अधिक है तो TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटा जाता है। खाता खोलने का स्थान जो है आप किसी भी अधिकृत बैंक जैसे SBI, HDFC या फिर नजदीकी डाकघर में जाकर ये खाता आसानी से खोल सकते हैं। बात करते हैं पात्रता की। 60 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी नागरिक, 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष के कम आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी BRS यानी कि VRS लेने वाले भी इस के अंतर्गत आते हैं। यदि ये सेवानिवृत्त लाभ मिलने के 1 महीने के भीतर निवेश करते हैं तो रक्षा सेवाओं यानी कि डिफेंस से सेवानिवृत्त कर्मचारी 50 वर्ष की आयु के बाद इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS की ब्याज दर वित्त वर्ष 2026-27 की पहली त्रिमाही यानी अप्रैल से जून 2026 के लिए 8.2% है। इसकी ब्याज दर हर त्रैमाही में बदलती रहती है और ब्याज का भुगतान भी तिमाही आधार पर प्रत्येक तिमाही के पहले दिन यानी 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को लिया जाता है। 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 55 से 60 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त नागरिक कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर SCSS खाता खोल सकते हैं। 50 से 60 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर खाता खोल सकते हैं। बात करते हैं इसके कुछ लाभों के बारे में। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS के निवेशकों को आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है। इसके अलावा SCSS योजना में जमा की गई जो मूल राशि को आयकर अधिनियम के 80C के अलावा भी आयकर अधिनियम 2025 की धारा 123 के तहत कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। नई कर व्यवस्था के तहत धारा 80C के लाभ उपलब्ध नहीं है। यदि SCSS खातों में कुल ब्याज प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक हो जाता है तो TDS की कटौती की जाएगी। यदि खाता 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा खोला जा रहा है तो यदि ब्याज 50,000 रुपए प्रतिवर्ष है तो भी TDS की कटौती की जाएगी। डाकघर की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जो विशेषताएं हैं वो जैसे कि सुरक्षित निवेश, क्योंकि SCSS एक सरकारी समर्थित योजना है इसलिए इसकी जो परिपक्वता है पर रिटर्न की गारंटी होती है। हालांकि 1 लाख रुपए तक नगद जमा की अनुमति है लेकिन सीमा से अधिक जमा राशि के लिए बैंक भुगतान अनिवार्य।

0: व्यक्ति एक से अधिक SSCSS खाते खोल सकते हैं। हालांकि संयुक्त खाते केवल जीवन साथी के साथ ही खोले जा सकते हैं और पूरी जमा राशि पहले खाता धारक के नाम पर ही मानी जाती है। SCSS खाता खोलते समय या उसके बाद भी नामांकित व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि 1,00,000 रुपए नगद जमा की अनुमति है, लेकिन सीमा के अधिक होने पर TDS कट सकता है। जैसे कि मैंने कहा, सेवानिवृत्ति लाभ होने पर एक महीने के भीतर एक ही किश्त में जमा कर देना चाहिए। यहां सेवानिवृत्ति लाभों के भविष्य निधि देय राशि ग्रेच्युटी पेंशन का परिवर्तित मूल्य अवकाश नकदीकरण समूह बचत लिंक्ड बीमा योजना का बचत घटक कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्ति सह निकासी लाभ और स्वैच्छिक या वैश्विक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अनुग्रह भुगतान शामिल है। यदि जमा राशि निर्धारित सीमा से अधिक है तो अधिक राशि खाताधारक को तुरंत वापस कर दी जाएगी। व्यक्ति फॉर्म 2 में आवेदन करके किसी भी समय राशि निकाल सकते हैं और खाता बंद कर सकते हैं। समय से पहले निकासी केवल एक बार ही की जा सकती है। SCSS खातों से निकासी आप एक बार ही कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दस्तावेजों की बात करते हैं। पासपोर्ट आकार की 2 तस्वीरें, पहचान का प्रमाण जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड या पासपोर्ट, पते का प्रमाण जैसे आधार कार्ड, टेलीफोन बिल, आयु का प्रमाण जैसे पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र या वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन कार्ड, वरिष्ठ नागरिक कार्ड। इसके अलावा सभी दस्तावेजों पर आवेदक द्वारा स्व सत्यापन होना अनिवार्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची जो है, जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है वहां जाकर आप खाता खोल सकते हैं। इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस में भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोल सकते हैं। आज परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत हम बात कर रहे थे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

शंकर महादेवन को सुन रहे थे आप फिल्म मनी कार्निका से। 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम तीन का तड़का, 3:47 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ। वेलकम टू द जंगल का नया पोस्टर सितारों का मेला फिर सजा। जून के दूसरे सप्ताह में हंसी और हलचल की खबर लेकर वेलकम टू द जंगल मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर और प्रमोशनल झलक जारी की, जिसमें मल्टी स्टार कास्ट की चमक ने दर्शकों का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर फैंस ने लिखा, इतने सितारे एक ही पर्दे पर, अक्षय कुमार समेत कई कलाकारों की मौजूदगी वाली ये फिल्म पहले ही चर्चे में थी, मानो बॉलीवुड का कारवा फिर हंसी के जंगल की ओर निकल पड़ा है। उधर आवारा पंटून से इमरान हाशमी ने नई झलक पुरानी यादों की दस्तक दी है। कभी कभी कई फिल्में सिर्फ कहानी नहीं याद बन जाती है, और इस हफ्ते आवारा पंटू से इमरान हाशमी की नई झलक और म्यूजिकल अपडेट्स ने फैंस के दिलों में पुरानी यादें ताजा कर दी है। सोशल मीडिया पर लोग 2007 की आवारापन के गीत और भावनात्मक कहानी को याद कर रहे हैं। फिल्म के संगीत को लेकर खास उत्सुकता है, क्योंकि फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि फिर कोई ऐसा गीत आए जो दिल की गलियों से बरसों गूंजते रहे थे। करण जौहर ने नए टैलेंट पर जताया भरोसा, नई कहानियों

दस्तक होने वाली है जून में। जून के दूसरे सप्ताह में फिल्म निर्माता करण जौहर ने एक इंटरव्यू में संकेत दिए और उनका बैनर आने वाले महीनों में नए कलाकारों और जो फ्रेश स्क्रिप्ट पर ज्यादा काम करेगा। इंडस्ट्री में ऐसे बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर फिल्म प्रेमियों के ने कहा कि अगर नई प्रतिभाओं को मौका मिलेगा तो बॉलीवुड को नया रंग भी मिलेगा, जैसे नई सुबह में नई किरणें जन्म लेती है। बिल्कुल वैसे ही बॉलीवुड में भी नए चेहरों की जो आहट सुनाई देने की उम्मीद है, हो सकता है। चलिए उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना। गवर्नर द साइलेंट सेवियर की जो चर्चा है, गीतों के बड़ा उत्साह। 12 जून को रिलीज हुई गवर्नर द साइलेंट सेवियर ने अपने प्रेरणादायक विषय और संगीत के कारण चर्चा बटोरी है। साइलेंट सेवियर के बारे में बहुत हफ्तों से ये बात जो है ये बातें हो रही थी इंडस्ट्री में कि खासकर जावेद अख्तर के लिखे गीतों के दर्शकों के बीच अलग एक पहचान बना ली थी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि फिल्म का संगीत पुराने दौर की सादगी और उम्मीद का एहसास कराता है, जैसे अंधेरे में कोई छोटा सा दीपक रख दिया हो। वैसे बातें तो बहुत सी हुई लेकिन इसके गीत दर्शकों के दिल को जरूर छू गए। हाँ, आगे बढ़ेंगे लेकिन इस बार गीत के साथ। हाँ, ये गीत कई बार हमने सुना है लेकिन जितनी बार सुना है उतनी बार एक एनर्जी ऊर्जा आ जाती है। शाश्वत सचदेव, शुभदीप दास चौधरी, अरमान खान की आवाज, फिल्म का नाम धुरंधर, इरशाद कामिल के बोल और शाश्वत सचदेव और रोशन के संगीत निर्देशन में कार्यक्रम 3 का तड़का। 3:51 संचिता के साथ।

एक्शन का तड़का में जो आखिरी चंक बचा है वो एक्शन प्रेमियों के लिए खूबसूरती। जी हाँ, एक खूबसूरत खुशखबरी कह सकते हैं, जून के दूसरे सप्ताह में बागी 5 को लेकर ट्रेड सर्कल्स में हलचल तेज है। खबरें रही कि फिल्म की तैयारी और स्क्रिप्ट वर्क तेजी से आगे बढ़ रही है। टाइगर श्रॉफ के प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर पहले ही जबरदस्त उत्साह दिखाना शुरू कर दिया है। कई फैंस ने ये भी कहा कि फिर हवा में उड़ते स्टंट्स का इंतजार है हम लोगों को। लगता है बॉलीवुड का एक्शन अध्याय फिर से शुरू होने वाला है बागी 5 के साथ। फिलहाल एक सफर छोड़कर दूसरे सफर में हम जाएंगे और अगला जो सफर है मेरे साथ आपका वो है FM गोल्ड पर, कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स 5:15 पर। तो चलिए जाते जाते बागी 2 से ये ट्रैक जुबिन नौटियाल की आवाज, साइद कादरी ने लिखा और मिथुन ने संगीतबद्ध किया। अगले कार्यक्रम के साथ रहिए और सुनते रहिए इस गीत को।

0: টেলিলয়ের অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in অথবা টোল ফ্রি নাম্বার 14454 এর মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা লাভ করা সম্ভব।
1: জানে অনজানে जाने अनजाने गीतों की महफिल सजी है और यादों की परछाई तो थी, सुरों की मंजिल, कभी हंसी की लहरें तो कभी आंसुओं का साया, हर धुन में छुपा है दिल का एक सच्चा सा साया। रेडियो की तरंगों पर बहते हैं ये नगमे जैसे चांदनी रात में चमकते हो सितारे। अनजाने सफर में ये साथी बन जाते हैं, दिल की खामोशी को बोलते हैं, गुनगुनाते हैं जाने अनजाने, पर दिल से पहचाने हर गीत में छुपे हैं अरमान पुराने। ये नगमे मोहब्बत की रूहानी निशानी है, जाने अनजाने पर सदा दिल के करीब रह जाने वाली एक कहानी छोड़ जाती है। शुरुआत करें स्टेबन बिन की आवाज, बहुत प्यार तुमसे करता है दिल। 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम जाने अनजाने, आपके साथ हूं मैं संचिता। 7:04

जाने अनजाने। जाने अनजाने 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम है जाने अनजाने। 7:09 और 8 सेकंड आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संजोता के साथ। 1989 का दौर, यश चोपड़ा की फिल्म रोमांस को नए युग में पहुंचाया। इस गीत में लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज ने जादू बिखेरा। दिलचस्प तथ्य यह है कि फिल्म की शूटिंग स्विट्जरलैंड की वादियों में हुई, जिसने भारतीय सिनेमा में विदेशी लोकेशन की परंपरा को और मजबूत किया। श्रीदेवी की अदाकारी, उन्हीं की आवाज संगजौली मुखर्जी, रविंद्र जैन की धुन ने इसे अमर बना दिया। फिलहाल जिस धुन को हम सुनेंगे वो है उसी फिल्म से। फिल्म का नाम चांदनी, आनंद बख्शी के बोल शिव हरी की धुन, श्रीदेवी और जौली मुखर्जी की आवाज। है तो बहुत पुरानी यादें, लेकिन है जाने अनजानी बातें, और अभी भी याद है

गाने वाला भी नहीं, गीत है कार्यक्रम जाने अनजाने में। चांदनी फिल्म्स इस गीत को आप सुन रहे हैं। 7:14 और 37 सेकंड 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम जाने अनजाने। 1998 की कल्ट क्लासिक फिल्म दिल से, आइकॉनिक टाइटल ट्रैक दिल से रे दिल से रे, ऐसे मणिरत्नम ने निर्देशित किया, संगीत AR रहमान ने दिया और इसके बोल मशहूर गीतकार गुलजार ने लिखे। ये गीत अपनी आत्मा को छू लेने वाली धुन और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी के लिए जाना जाता है। AR रहमान, अनुराधा श्रीराम और अनुपमा, गीतकार गुलजार, शाहरुख खान और मनीषा कोइराला स्क्रीन पर। इस गाने के टाइटल ट्रैक में प्रसिद्ध ब्रिटिश बास जो है गिटारिस्ट गाय प्रैट ने बास बजाया, जिन्होंने पिंक फ्लॉयड के साथ भी काम किया हुआ है। इस गाने की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी, जिसमें शाहरुख खान को रेगिस्तान में आग के बैकड्रॉप और अलग अलग दृश्यों में गाते और थिरकते हुए दिखाया गया। ये गाना फिल्म के मुख्य पात्र अमर, जो कि एक रेडियो जॉकी है, और मोइना, एक विद्रोही है, के बीच तीव्र जुनून भरे रहस्यमयी प्रेम का प्रतीक है। इस फिल्म के और भी बहुत सारे ट्रैक हैं, लेकिन

चलिए जाने अनजाने में शामिल करते हैं इसी ट्रैक को। गुलजार के बोल को एआर रहमान ने संगीतबद्ध किया और आप सुनेंगे बहुत दिनों के बाद 1989 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और हम कम ही सुनते हैं इस गीत को। हाँ, एक वक्त पर बहुत सुना करते थे, आवाज एआर रहमान की। 7:16 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम जाने अनजाने, आपके साथ हूं मैं संचिता।

जाने अनजाने। जाने अनजाने गीत 1998 की एक और कल्ट क्लासिक सत्या के लोकप्रिय गीत सपने में मिलती है। ये आइकॉनिक एक ट्रैक है, इसे विशाल भारद्वाज ने कंपोज किया था, गुलजार ने इसके बोल लिखे और इसे सुरेश वाडकर और आशा भोसले ने अपनी आवाज दी। राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में उर्मिला मांटोटकल और जेडी चक्रवर्ती स्क्रीन पर आपने देखा विशाल भारद्वाज की संगीत। ये गाना फिल्म के रोमांटिक कॉमिक ट्रैक के रूप में उभरा था और इसके बोल काफी चुलबुले थे, जो एक साधारण प्रेमी के ख्यालों और सपनों का वर्णन करता है। फिल्म के गंभीर और डार्क अंडरवर्ल्ड माहौल के बीच ये गीत दर्शकों के लिए एक सुकून भरा और खुशनुमा पल लेकर आता है। अगर आपने फिल्म सत्या देखी है तो आपको याद होगा सुधीर मिश्रा की फिल्म सत्या का ये गीत सुरेश वाडकर और आशा भोसले ने आवाज तो दी, लेकिन इंटरेस्टिंग ये था कि जिसे इस गीत का फिल्मांकन जो है मुंबई की गलियों में किया गया। आम आदमी के जीवन में जो जुड़े हुए सपने हैं, उन सपनों में जो प्रेम और यथार्थवाद है, उसका अनूठा संगम अगर निकाला जाए, निचोड़ अगर निकाला जाए, तो वो यही गीत है। कार्यक्रम जाने अनजाने। सात बजकर 25 मिनट 31 सेकंड आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संजय

7:31 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम जाने अनजाने। कुछ याद आया? बिल्कुल याद आया।

2004 की सुपरहिट थ्रिलर फिल्म मर्डर का हिस्सा है ये गीत। लेकिन एक बेहद लोकप्रिय हिंदी रोमांटिक गीत इस फिल्म में है जो सबको भावपूर्ण संगीत और शानदार बोल के कारण ये गीत बहुत फेमस हुई। सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज, अनु मलिक ने इसे संगीत से सींचा, सईद कादरी ने बोल लिखे और स्क्रीन पर आपने देखा मलिका शरावत इमरान हाशमी को। गाने का एल्बम जो है 31 जनवरी 2004 को रिलीज हुआ था और इस गीत को अलग अलग वर्जन्स यानी कि पुरुष और महिला वर्जन्स में रिकॉर्ड किए गए थे और ये वाला वर्जन जो है बहुत पॉपुलर हुआ था। जिस गीत को आप सुनेंगे सोनू निगम की आवाज में सईद कादरी के बोल को अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम जाने अनजाने, फिल्म का नाम मर्डर। बहुत सालों बाद इस फिल्म की सीक्वल मर्डर 2 भी बनी।

7:37 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम जाने अनजाने। 1994 में आई फिल्म, हालांकि ऐतिहासिक फिल्म है, 1942 की एक लव स्टोरी का जिक्र है। प्रतिष्ठित रोमांटिक हिंदी गीत है, आरडी बर्मन द्वारा संगीतबद्ध, जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए बोलों और मुख्य रूप से कुमार शानू द्वारा गाए गए इस गीत की रचना की गई थी और ये अभूतपूर्व सफलता बन गई। ये महान संगीतकार की अंतिम रचना साबित हुई। मैं बात कर रही हूं पंचमदा राहुल देव बर्मन की। इस गीत को आरडी की अंतिम कृति के रूप में खूब सराहा जाता है। उनका निधन जनवरी 1994 में हुआ, फिल्म की रिलीज से कुछ ही महीने पहले। मनमोहक बांसुरी की धुन, प्रसिद्ध बांसुरी वादक रोनू मजुमदार द्वारा प्रस्तुत की गई। ये गीत दादरा ताल में खूबसूरती से रचा गया था। हालांकि कुमार शानू की खुश मिजाज और पुरुष एकल संस्करण सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन इस गाने के अलग अलग संस्करण भी हैं। आरडी बर्मन की अचानक मृत्यु के बाद संगीतकार को श्रद्धांजलि के रूप में लता मंगेशकर ने इस गीत का दुखद महिला संस्करण रिकॉर्ड किया। कविता कृष्णमूर्ति ने भी इससे पहले एक दुखद संस्करण रिकॉर्ड किया, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया। इस गाने की अपार लोकप्रियता से बॉलीवुड के इतिहास में एक जगह पक्की कर ली थी। इस फिल्म के लिए आरडी को मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का 3रा फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। कुमार शानू की गायकी ने उन्हें अपार प्रसिद्धि दिलाने में मदद की। गाने के जो पंक्तियां हैं, कुछ ना कहो कुछ ना कहो, कुमार शानू की आवाज जावेद अख्तर के बोल को संगीत से सींचा था आरडी बर्मन ने। 1942 अ लव स्टोरी। ₹107 FM रेनबो पर कार्यक्रम जाने अनजाने में आपके साथ हूं मैं संचिता।

काम किया गया हो। वाकई क्या ही कहें, 1991 की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल है कि मानता नहीं के बारे में सबसे लोकप्रिय और सदाबहार ट्रैक, ये एक आइकॉनिक रोमांटिक गाना है जो प्यार की मासूमियत और जिद को दर्शाता है। अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू, फैज अनवर के बोल, समीर साहब के बोल को नदीम श्रवण ने संगीतबद्ध किया, महेश भट्ट की फिल्म। इस फिल्म ये फिल्म जो है ऑस्कर विजेता हॉलीवुड फिल्म, जैसे कि मैंने कहा इट हैपेंड वन नाइट से प्रेरित थी और इस सदाबहार ट्रैक की धुन इतनी मधुर थी कि निर्देशक महेश भट्ट ने इसे सुनते ही तुरंत गीतकार फैज अनवर को बोले कि बस यही चाहिए और गले लगा लिया था। इस एल्बम के सभी गीत बहुत बड़े हिट बने। अनुराधा पौडवाल की आवाज इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी कह सकते हैं और इस गीत को सुनना तो बनता ही है। कार्यक्रम है जाने अनजाने, 107 एफएम रेनबो पर आपके साथ हूं मैं संचिता, लेकर इस कार्यक्रम को 7:48।

107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम है जाने अनजाने। 5 मिनट का वक्त बाकी है आपके और हमारे दरमियान। उसके बाद 8 बजे हम रूबरू होंगे खबरों की दुनिया से, वापस आएंगे 8:02 पर। जतिन ललित की धुन और उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज ने युवाओं के दिलों को जीत लिया। करण जौहर की डेब्यू फिल्म और ये गीत दोस्ती और प्रेम की अनोखी परिभाषा बना। शाहरुख काजोल की जोड़ी ने इसे अमर कर दिया। ये गीत युवाओं की धड़कन में आज भी गूंजता है। जी हां, वही गीत जिसे समीर ने लिखा, जतिन ललित ने संगीतबद्ध किया और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जाने अनजाने में। फिर से वापस आते हैं 8:02 पर। तब तक सुनते रहिए इस गीत को।

0: जाने अनजाने।
1: बिल्कुल, कहानियों का सिलसिला तो अभी बाकी है। गबर इज बैक से इस खूबसूरत से गीत को आप सुन रहे थे, और आवाज की क्या बात करें, एनर्जेटिक अरिजीत सिंह और पलक मुच्छाल। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही भावुक कर देने वाला गीत, इसलिए क्योंकि ना तो बालू जी आज हमारे बीच है और ना ही राम लक्ष्मण। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ। विवाह और उत्सव का प्रतीक बना ये गीत। एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज ने इसे अमर बना दिया। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़, और ये गीत शादी समारोह या फिर स्थायी हिस्सा तो बन ही गया। इसमें प्रेम की पहली धड़कन और जीवन की नई शुरुआत का एक झलक देखने को मिला। ये गाना फिल्म के सबसे मधुर और यादगार गानों में से एक है, जो प्रेम सलमान खान और नशा माधुरी दीक्षित के बीच पनपते प्यार को दर्शाता है। गीत के बोल, पहला पहला प्यार, दर्शकों के दिलों में आज भी बसे हुए हैं। इसका संगीत उस दौर के क्लासिक रोमांटिक मेलोडी का बेहतरीन एक उदाहरण है। हम आपके हैं कौन, देव कोहली का लिखा हुआ गीत, जिसे राम लक्ष्मण ने संगीतबद्ध किया, एसपी बाला सुब्रमण्यम की इलेक्ट्रिफाइंग आवाज। कार्यक्रम जाने अनजाने।

पहला बार है और पहला प्यार है, पहली बार है और पहली बार शायद कमाल खान की आवाज में युवाओं का फेवरेट बना। सलमान खान के फिटनेस आइकॉन छवि की शुरुआत हुई इस गीत के साथ, ऊर्जा, जोश और प्रेम की धड़कन। कौन सी फिल्म, प्यार किया तो डरना क्या, 1998 की फिल्म। हिंदी पॉप सॉन्ग कमाल खान का ये गीत ब्लॉकबस्टर, जी हां, बन गई। अपने शुरुआती गिटार रीफ और सलमान खान के मशहूर शॉर्टलेस डांस सीक्वेंस के लिए जाना जाने वाला ये गाना जतिन ललित की जोड़ी द्वारा संगीतबद्ध किया गया था और इसके बोल समीर ने लिखे थे। सलमान खान के करियर का एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर, सलमान के मुताबिक उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर विक्रम फडणवीस द्वारा दी गई शर्ट को वापस भेज दिया क्योंकि वो बहुत टाइट थी और उन्होंने अपने मस्कुलर शरीर को दिखाने के लिए इसे शर्टलेस लुक करने का फैसला किया। एक दिलचस्प बात यहां पर यह थी कि गाना लगभग 6 साल तक कैसेट कंपनियों द्वारा आविष्कार क्या ही कहे अस्वीकार कर दिया गया था कि क्या करें, इसे कैसे चलाएं, लेकिन सलमान खान को इस पर इतना भरोसा था कि उन्होंने इस फिल्म में इस्तेमाल करने का फैसला किया और ये गाना आज भी पार्टियों में, शादियों में सबसे ज्यादा बजने वाले जो गाने हैं उसमें से एक जरूर है। वही गाना शर्टलेस मैस्कुलाइन, सलमान खान का लुक, कमाल खान की आवाज, समीर के बोल और जतिन ललित के संगीत निर्देशन में बनी थी यह ऐतिहासिक गीत सुन रहे हैं आप। बहुत बार सुनने के बाद कार्यक्रम जाने अनजाने, फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, 8:17।

जाने अनजाने। FM रेनबो पर कार्यक्रम जाने अनजाने 8:22। अनु मलिक के धुन और कुमार शानू की आवाज में अमर हुआ ये गीत शाहरुख खान के करियर का टर्निंग पॉइंट। गीत ने प्रेम और रहस्य को साथ पिरोया अपने साथ। और इस फिल्म के गीतों की क्या बात करें, दो गीत सुनने हैं इस फिल्म से। बाजीगर है फिल्म का नाम। अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध और देव कोहली द्वारा लिखे हुए इस गीत को कुमार शानू और अनु मलिक ने गाया और इस गीत के लिए कुमार शानू को लगातार चौथा फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के रूप में मिला। 1993 की फिल्म बाजीगर। बाजीगर साउंडट्रैक एल्बम की 10 मिलियन से अधिक इकाइयां जो है बिकी, जिसमें ये 1993 का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। इस गीत की जोशीली जो लय और संगीत संरचना, विशेष रूप से 1989 की जो अफ्रीकी पॉप हिट यके यके से प्रेरित है। इस गाने को शाहरुख खान और काजोल पर फिल्माया गया और जिससे ये बॉलीवुड के इतिहास में सबसे यादगार गीतों में से एक कह सकते हैं। ये काली काली आंखें। और इसी फिल्म में विनोद राठौड़ द्वारा गाया हुआ एक और ट्रैक जो कि बिल्कुल इसी की तरह पॉपुलर हुआ, रानी मलिक ने लिखा था और अनु मलिक ने उसे संगीत से बांधा। तो चलिए फिलहाल सुनते हैं कुमार शानू और अनु मलिक की आवाज में। फिल्म का नाम बाजीगर। कार्यक्रम जाने अनजाने।

0: जाने अनजाने।
1: एक से दिल नहीं भरता, एक से भले दो। 8:39 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम है जाने अनजाने। आपके साथ हूं मैं संचिता। 90 यानी 90s का एक गीत, 90s के दशक का एक गीत विदेशी धरती पर फिल्माया गया और भारतीय सिनेमा में नई परंपरा बनाई। इसकी धुन और शब्दों ने प्रेम को दूरी के पार भी जीवित रखा। 1992 में आई एक्शन थ्रिलर फिल्म विश्व आत्मा का एक प्रतिष्ठित बॉलीवुड गीत, बीजू शाह द्वारा संगीतबद्ध और आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए गीतों में से साधना सरगम द्वारा गाया गया मूल महिला संस्करण जो है 90s के दशक का एक जबरदस्त हिट गीत साबित हुआ, जो नवोदित कलाकार दिव्या भारती के शानदार नृत्य प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। राजीव राय द्वारा निर्देशित ये एक ऐतिहासिक फिल्म थी क्योंकि ये केनिया में शूट की गई पहली और सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक थी। इस गाने को नवोदित अभिनेत्री दिव्या भारती पर फिल्माया गया था, जो नायरोबी के बबल्स डिस्को थेक में सफेद पोशाक में नृत्य कर रही थी। प्रसिद्ध महिला संस्करण साधना सरगम द्वारा गाया गया था। गीत का एक लोकप्रिय मेल वर्षन यानी पुरुष संस्करण भी है, सात समंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गया। चंकी पांडे ने और उसे उदित नारायण और जॉली मुखर्जी ने गाया, जिसे चंकी पांडे पर फिल्माया गया था। और ये गाना 90s के दशक की पॉप संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। शादियां, पार्टीज, अंताक्षरी प्रतियोगिताओं में आज भी अनिवार्य रूप से बजता ही है। निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने अपनी दिवंगत पत्नी और मूल गीत की अभिनेत्री दिव्या भारती को श्रद्धांजलि के रूप में ब्लॉकबस्टर फिल्म किक के लिए इस गीत के अधिकार प्राप्त किए थे। इस गाने को आधिकारिक तौर पर विशाल शेखर द्वारा रीमेक किया गया और फिल्म तू मेरी मैं तेरा के लिए करण नवानी द्वारा इसे दोबारा गवाया गया, जिसमें अभिनेता कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने एक्ट किया था। आगे बढ़ेंगे इसी गीत के साथ, साधना सरगम यानी फीमेल वर्षन के साथ आनंद बख्शी के बोल को विजू शाह ने संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम जाने अनजाने, आपके साथ मैं संचिता।

जाने अनजाने। वन ओ सेवन एफ एम रेनबो पर कार्यक्रम जाने अनजाने। 2009 यानी 2009 की फिल्म अमित त्रिवेदी की धुन और कविता सेठ की आवाज ने एक गीत को आत्मा की गहराई तक पहुंचा दिया था। गीत की सादगी और शब्दों की गहराई ने इसे आत्म खोज का प्रतीक बना दिया। बहुत ही खूबसूरत सा गीत 2009 की, ये एक ऐसी गीत जिसे कभी बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि कभी इतनी पॉपुलर हो पाएगी, लेकिन हाँ ऐसा हुआ। कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा गाया गया, जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए बोलो और अमित त्रिवेदी द्वारा अतिथि संगीत रचना के साथ ये आंतरिक आत्मखोज और प्रेम के बारे में बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध रोमांटिक गीतों में से एक बन गया। एक तारा, जिसका अर्थ है एक तार वाला वाद्य यंत्र अपनी सादगी और भावनात्मक ईमानदारी के लिए खास पहचान रखता है। ये गाना बेहद लोकप्रिय हुआ और गायिका कविता सेठ को व्यापक लोकप्रियता दिलाई, जिससे उनके बाद के जो लाइव कॉन्सर्ट्स हैं उसमें सेटलिस्ट पर गहरा प्रभाव पड़ा। 2009 वेक अप सेट फिल्म से एक तारा, मुख्य साउंडट्रैक शंकर ईशान लॉय की तिर्की ने तैयार किया था, जबकि अमित त्रिवेदी जो कि फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संभाल रहे थे, अतिथि संगीतकार के रूप में इस गाने का संगीत भी तैयार किया। कविता सेठ को डेमो रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया और उनकी आवाज की बनावट उन्हें तुरंत पसंद कर दी गई और जिसके बाद उन्हें फिल्म की मुख्य महिला गायिका के रूप में चुन लिया गया। त्रिवेदी के अक्सर सहयोगी रहे अमिताभ भट्टाचार्य ने भी पृष्ठभूमि स्वर दिए और इस गीत में पुरुष स्वर प्रतिध्वनि जो है उसका श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। इस गीत का एक पूर्णतः पुरुष प्रधान संस्करण भी तोची रैना और रमन महादेवन द्वारा गाया गया था। हालांकि इसे बाद में डिजिटल रूप से जारी किए जाने तक सार्वजनिक रूप से रिलीज नहीं किया गया। चलेंगे उसी गीत की ओर, एक तारा, वेक अप सिड। 8:52 सुन रहे हैं वेक अप सिड से इस गीत को।

एक ऑरेंज अलर्ट यानी कि नारंगी चेतावनी दी गई है हावड़ा और हुगली के लिए मौसम संबंधी चेतावनी। आज शाम के 6:45 से अगले 2-3 घंटे के दौरान हावड़ा और हुगली जिलों के कुछ हिस्सों में मध्यम दर्ज की आंधी और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र कोलकाता द्वारा ये चेतावनी दी गई है। अभी तक जिस कार्यक्रम के साथ आप बने हुए थे वो है जाने अनजाने संचिता के साथ। आखिरी गीत इस कार्यक्रम का और इजाजत दीजिए इसी गीत के साथ। अगले कार्यक्रम के साथ रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द लेकर ऐसे ही किसी कार्यक्रम को। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम मैंने प्यार किया। अशाद भोपाली ने लिखे गीत के बोल, राम लक्ष्मण ने इसे संगीतबद्ध किया।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: Cine quiz.
1: Typically Indian. हारने पे भी उम्मीद नहीं छोड़ते.
2: ओह, जब तक हार नहीं होती ना, तब तक आदमी जीता हुआ रहता है.
1: लेकिन चार्ली यूनिवर्सिटी रग्बी चैंपियन है, तभी तो उसने तुम्हें क्रिकेट के लिए नहीं रग्बी के लिए चैलेंज किया.
2: अच्छा अच्छा, मुझे लगा उसने लगान देख ली इसलिए किया.
1: क्या लगा?
2: तुम पिक्चरें नहीं देखती क्या?
1: हो, देखती हूँ, लेकिन हिंदी नहीं.
2: ओ, तभी तो. अरे उम्मीद है तो सब है, शर्त लगाती हो.
1: मत लगाओ, तुम हार जाओगे.
2: वो मेरी प्रॉब्लम है. जीत गए तो तुम मुझे लंदन घुमाना, हार गए तो मैं बोरिया बिस्तर बांध के पंजाब चला जाऊंगा.
1: ये पंजाब जाने की धमकी क्यों दे रहे हो? चलो तुम हारे भी तो भी मैं तुम्हें लंदन घुमाऊंगी.
3: बोलते पारबे, এইখানে যে দুজন বলিউড অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসের গলা শোনা যাচ্ছে, তারা আসলে কারা?
0: চটপট উত্তরটা পাঠিয়ে দিন নিজের নাম আর লোকেশন সমেত হোয়াটসঅ্যাপ বা এসএমএস করে 9903659992 নম্বরে. আর খেলতে থাকুন সিনে সিনে সিনে কুইজ.
4: তুমি শুনছো উইকেন্ড ফিল্মি ফিভার 107 FM রেনবোতে. Weekend Filmy Fever. Weekend Filmy Fever. Yaade. Flashback Fever. Yaade. Yaade. Flashback Fever. Flashback Fever.
5: ফ্ল্যাশব্যাকের ফিভারে কাঁপতে কাঁপতে সুপ্রীতি আরে বিহু চলে এসেছি. কারণ কারণ কারণ এগেইন আজকে 13 জুন এবং ঠিক দুদিন পরে মানে 15th of June 2001 সালে সেই সিনেমা রিলিজ করেছিল যেই সিনেমা দেখে আজও প্রচুর নজওয়ান প্রেম

0: लव।
1: हीरो नंबर वन स्पॉटलाइट के
2: आज के स्पॉटलाइटे ना हीरो रहे छे ना वन रहे छे, आज के तीन तीन जन असाधारण हिरोइन रहे छे आमादेर हीरो नम्बर वन सेगमेंटे एकेबारे आलो करे, कारण रिसेंटली रिलीज करे छे मा बहन बोले वेब सीरीज एवं सेइखाने तीन जन असाधारण सुंदरी भद्रमहिला निजेदेर एकेबारे टॉप टीआर परफॉर्मेंस दिएछेन एंड दे आर
3: माधुरी दीक्षित एज रेखा, तृप्ति दिमरी एज जया, भेवना